0: उस होम पर 111-111-425 बांदी कार उकड़ाई या दनिश दे बरान सरा राबिता उकड़ाई
1: शराय तो जवाबत लागू है।
2: सारा दास दी आशुमान यो खा और तबल खा कपड़ो शॉपिंग द पारबा तरसो मुंगा बाजारों की गर्जो
3: ओ हो सरिया परेशान की गमा ददी मसले रा सरा डे खेस्ता पल दी
2: आगाज
3: अल सईद क्लास हाउस एंड गारमेंट सेंटर द सड़ो तपारा हा मायारी और वर्ड सुट न मिलावेगी लक ग्रेस टाम टेक्स एडमानी पाशा अलकरम और नोर मल्टीनेशनल ब्रांड्स और द जनानो द पारा मारियाबी मरीन सफायर निशा ऑपरेटेड लोन होम मिलावेगी और दाला सके दमाशुमान द पारा हफेन मौजूद दी आओ आओ तयो छत दलान दी
2: वाह वाह जरूरत निश्ता
3: आओ जी बिल्कुल फूटिंग द पारा सिर्फ यो नू अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट्स एंड राम तासु दखवाखी दुकान नो पता याद साते अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर बटाग्राम नीस पीएसओ पंप अल फकीर शॉपिंग प्लाजा बटाग्राम को पता दर नकलती की नो सईद खालिद शाह और परवेश शाह सरा पदे नंबर और राबिता कोलिशे 0351-33-640 बल नंबर दे 0391-21-162 अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशालय में
4: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
5: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

वलचरा वर्जम मैसेजों तरफ था सलाम भाई आए आई खान आई भाई जमा जग दस वही जमा झगड़े का रोको मुंग प्लार स्वाद तरावस्तु औ भाई तासो हम पचकर स्वाद तराशे जमुंग जे डेर खुले द चकर जे दे जाला जाला बा मड़े यानी कि एप्पल यो सेखा आई एम सानिया खटक फ्रॉम स्वात मलक मलम जबा बाई पटाखम जान सर रावले और गत तकेदा पटाखमा सर खुआ के नास्तरा कल

0: फिर कभी नहीं हो सकती मोहब्बत, सुना तूने फिर कभी नहीं हो सकती मोहब्बत, सुना तूने वो शख्स भी एक था और मेरा दिल भी एक है। वफा सभी को मिली सिवाय हमारे, वफा सभी को मिली सिवाय हमारे, हमें जब भी प्यार हुआ तो बेकदरों से हुआ। कमाल का शख्स था जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, कमाल का शख्स था जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। रास की बात तो ये है कि दिल उससे अब भी खफा नहीं।
1: तो तेरी चौखट से अपने गम छुपा लेंगे हम, झूठी मुस्कुराहट से।
0: तुम ही आखिर ताम लो न मुझको जाना,
1: भीगी भीगी पलकों में
0: सबने छोड़ दिया है मुझे तेरा समझ कर।
1: आँख से छलक जाए तो प्यार तेरा बहता है, मांगू मैं अब क्या रब से पाया।
0: माई फेवरेट पोएट,
1: इश्क तेरा
0: जब वो मेरे नाम अपने हाथों की लकीरों में तलाश करके तक गई, तो सर झुकाया और रोकर कहा लकीरी तो झूठ बोलती है तुम मेरा ही होना। जब वो मेरे नाम अपने हाथों के लकीरों में तलाश करके तक गई, तो सर झुकाया और रोकर कहा लकीरी तो झूठ बोलती है अरे तुम मेरा ही होना।
1: साथ साथ चलने वाले राहें क्यों बदलते हैं, राहें जब बदल जाए
0: तुम बदलो तो मजबूरियां, हम बदले तो बेवफाई।

तेरी यादों से उल्फ, तेरी यादों की उल्फत से तुझसे जी है मेरी जिंदगी। मैं पागल हूँ जो तुझे भूल के वीरान हो जाऊँ।

0: वाले चुनाव अक्सर अटक वाले कहते हैं भाई आप उर्दू में बात नहीं करते, आप उर्दू शायरी नहीं करते। तो आज सब लिस्नर के लिए और साथ साथ ही हमारे अटक के जितने भी, क्योंकि हम अटक से प्रोग्राम करते हैं, तो अमन रेडियो के जितने भी हमारे लिस्नर हैं उनके लिए तो हम पश्तो में शायरी करते हैं, बट अटक के जितने भी हमारे लिस्नर हैं उनके लिए उर्दू में थोड़ी सी।
1: तेरे जाने का और ना आने का फिर जमाने का क्या करें।
0: ऑल जनाब ढेरे ज्यादा मनना कहूँ यो दुनिया मनना, शायद कदे इंडिया सॉन्ग माना पगलते के प्लेस ही नहीं आगे। हम पाकिस्तानी सॉन्ग इतनी अच्छी है, जितनी भी ड्रामे सॉन्ग है वो बहुत जबरदस्त है।
2: हमारे जिस्म तो जुदा हो सकते हैं लेकिन रोए नहीं।

0: दर्जा 22 डिग्री सेंटीग्रेड आ हवा के दर में तनासुब निष्पक्ष भेदभेद रिकॉर्ड कले शिवे हमदाग शान नर न सहर न मिनट कम पाशपक बजी सिर वहली अनन मा खाम न हिश मिनट कम पाऊ बजी बा प्रियुजी हमदा उतरदीद मा मुहिम न्यूज अपडेट चिता सोर दो देहमद जार ना द नूर खबर नो मालूम रपारा अमन रेडियो नेटवर्क सरो से उस वर के हमद जाल ले इजाजत दलवी अल्लाह पामान।
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سری اوسئ۔